وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى

फुटबॉल मैच लागाम ऐं पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत ॿियनि ट्रेनुनि खे मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते रोकियो वियो। वहाब शाह रेलवे स्टेशन वटि माल गाॾीअ जूं केतिरियूं बोगियूं पटड़ीअ तां लहण सबबि ट्रेनुनि जी अचवञ मुतासिर थी वई। टीएस रेलवे कराची जो चवण आहे त हादसे सबबि अप ऐं डाउन रेलवे ट्रेक मुकमल तौर मुअतल आहे। रेलवे ट्रैफिक 24 कलाकनि ताईं मुअतल रहण जो इम्कान। ट्रेनुनि जी अचवञ 24 कलाक ताईं मुअतल रहंदी। कराकरम एक्सप्रेस खे हैदराबाद, अलामा इक़बाल एक्सप्रेस खे कोटड़ी स्टेशन ते रोकियो वियो आहे। पाकिस्तान एक्सप्रेस खे लांडी, तेज़गाम एक्सप्रेस डिग रोड ऐं फरीदाबाद एक्सप्रेस खे कैंट स्टेशन ते रोकियो वियो आहे। अवाम मौकियो ॾिनो त कश्मीर जोहर फोरम ते आवाज़ उथारींदासीं। आज़ाद कश्मीर ऐं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत ठाहींदासीं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारीअ जो कोटलीअ में जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुटो ज़रदारीअ चयो त पीपल्स पार्टी कश्मीर जो केस पूरी दुनिया में विढ़ियो। FIR कटराईंदड़नि खे बख़्श न कबो। गिलगित बल्तिस्तान जीअं कश्मीरनि जे हक़नि लाइ जिदोजहद करे रहिया आहियूं। आज़ाद कश्मीर जे अवाम खे हक़ मिल्कियत ऐं हक़ रोज़गार ॾियारींदासीं। बेनज़ीर भुटो चयो जिते कश्मीरनि जो पघर वहंदो उते असांजो रतु वहंदो। शहीद ज़ुल्फ़कार भुटो असांखे सेखारियो त कश्मीरनि जो फ़ैसिलो सिर्फ़ कश्मीर ई कंदा। बिलावल भुटो ज़रदारी वोट ख़ातिर न

0: ऐं वेंसवेला जे परडे॒ही वज़ीरनि विच में फोन ते राब्तो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पारां वेंसवेला में ज़िलज़िले सबब जानी नुक़सान ते ताज़ियत जो इज़हार। परडे॒ही वज़ीर इसहाक डार चयो त उमेद आहे त वेंसवेला जल्द बहालीअ तरफ़ अची वेंदो। पाकिस्तान डुखे वक़्त में वेंसवेला जी हुकूमत ऐं अवाम सां गॾु बीठल आहे। परडे॒ही वज़ीर पाकिस्तान तरफ़ां हमदर्दी ऐं एके जे इज़हार ते थोरा मञा वेंसवेला पारां अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान जी हाकारी किरदार जी साराह। DGISPR जे समर कैंप 2026 में शरीक शागिर्दनि सां ख़ासि वेह मुल्क जे 18 खां वधीक शहरनि जा 9 ऐं 12 जमायत जा 4000 खां वधीक शागिर्द शरीक। DGISPR ख़ासि वेहक में क़ौमी सलामती ऐं दहशतगर्दीअ चैलेंज ते तफ़सीली रोशनी विधी। शागिर्दनि जो चवण हो त असांखे मुल्क खे पेश ईंदड़ अंदरूनी ऐं परडे॒ही सिक्योरिटी चैलेंजेस बाबति असराइती आगाही मिली। बलोचिस्तान में भारतीय प्राक्सी फितनतुल हिंदुस्तान ऐं फितनतुल ख़ारिज जे नापाक किरदार बाबति आगाह कयो वियो। हिन दौर में ग़लति मालूमात ऐं प्रोपेगंडा तेज़ीअ सां पखिड़जण बाबति आगाही ज़रूर आहे। बबरलो में अॻुवा ऐं गुम थी वियल ॿारनि जे बाज़ियाबी लाइ एहतजाजी कैंप 24 ॾींहं बि जारी। मुज़ाहिरीन पारां मुतालबा न वञण जी सूरत में क़ौमी शाहराह ऐं रेलवे ट्रैक बंदि करण जो चिता। अॻुवाणनि चयो त वाइदनि ते अमल नाहे थियो। ख़ातिरी कराइण बावजूद का बि अहम अॻबराई साम्हूं नाहे आई। पुलिस रोज़ जे बुनियाद ते जाच बाबति आगाही ॾियण जो वाइदो कयो हो, उहो बि पूरो न कयो पियो वञे।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM।

अल्लाह ताला जी ज़ात ख़ुदि मोहबत आहे ऐं मोहबत जे करे ई हिन काइनात जा जज़ाए कुल सां ॻंढिया पिया आहिनि। सदन मक़सदु आहे त इलाही मोहबत जे दरियाह में समाइजी वञूं। अल्लाह ताला जी ज़ात मोहबत नेकी ऐं जमाल आहे। ग़ैर मुकमल सालिक खे आशिक सॾबो आहे। जेको कंहिं मुकमल इंसान जी मोहबत जो मोहताज हूंदो आहे, जंहिंखे माशूक सॾियो वियो आहे। अदना दर्जे वारा जेके माण्हू आहिनि, उन्हनि खे आला दर्जे जो जेको आहे उहो वारनि जेको जेको आहे सो दर्जो मिले थो। आला दर्जे वारनि खे आला दर्जो मिले थो ऐं उन्हनि खे पंहिंजो उहे माण्हू महिनत जेके कनि था जंहिंजी अलाह सां मोहबत आहे, उहे मथे वञी रहिया आहिनि ऐं आख़िरकार चोटीअ ते पहुची वेंदा आहिनि। हिरास पंहिंजनि हवासनि जी दुनिया जे चंद शयुनि खे ज़ाहिरु करे सघनि था। ज़हन ऐं अकुल वसीले कुदरत जा के थोरा राज़ परोड़े सघजनि था, पर मोहबत इंसान खे संदन मंज़िले मक़सूद ते पहुचाए सघे थी। मोहबत इंसान जी ज़हनी अखि खोले थी ऐं खेसि अल्लाह ताला जो मुशाहिदो कराए थी। मादी शयुनि सां मोहबत करण ऐं ख़्वाहिश जो ग़ुलाम थी पवण रूह लाइ धारियूं शयूं आहिनि। उहे शयूं गॾिजी संदसि परवाज़ खे रोकनि थियूं।

0: شهباز.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: माइनस हो सारी टेंशन्स जब हो आपके पास Zong 4G की।
4: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
4: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
5: ये मुअसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
5: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

जी समय इन प्रोग्राम रोशन सुबह में पाण वापस अची चुका आहियूं ऐं मेहनत मेहनत जेका आहे सख़्त मेहनत करण सां इंसान खे तकलीफ़ नाहे पहुचंदी ऐं असांखे अक्सर इंसानी जिस्म जे सख़्त यानी हुजण सां तजुब थींदो आहे ऐं उन में न बीमारी थींदी आहे ऐं थकावट थींदी आहे पर सर्दी गर्मीअ जो असर बि थींदो आहे ऐं उन में आसानी जेका आहे थी वेंदी आहे। मुआशरे में केतिरियूं अहिड़ियूं मौजूद आहिनि जेके औलाद हुजण बावजूद बग़ैर कंहिं पंहिंजो कमु कंदड़ मुलाज़िम रखण जे पोइ बि पंहिंजो जेको घर जो कमु आहे अकेले सर कंदियूं आहिनि। जेको बि हुन में माल ढगे जो कमु हुजे, रद पचा जो कमु हुजे ऐं थांव ते फा हुजनि या लटो कपिड़ो धोइण में कोई बि हुन में आर न कंदियूं आहिनि, पंहिंजी सॼी महिनत पाण कंदियूं आहिनि। का बि घर में अहिड़ी मासी कमकार वारी न आहिनि रखंदियूं ऐं कुझु औरतूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेको सॼो ॾींहुं फारिग हूंदियूं आहिनि ऐं मोबाइल इंटरनेट ते कमकार वेहंदे पोइ बि चवंदा आहिनि पंहिंजो थक आहे, मथे में सूर आहे ऐं कमु करण जहिड़ियूं न आहियूं। बहरहाल कुझु औरतूं सिलाई में मसरूफ़ ऐं पाणी में ॾींदियूं आहिनि, हमेशा घर खां वधीक महिनत कंदियूं आहिनि। महिनत ज़रूरी आहे ऐं जेतिरी बि इंसान महिनत कंदो महिनत में अज़मत आहे ऐं कोशिश करे माण्हू जेको पंहिंजो हथ जो पुरियो आहे, हथ जी महिनत आहे, उहो वधीक आहे। हुन में आराम बि अचे थो, सुकून बि अचे थो ऐं इंसान जी दिलि जेका आहे उहा मुतमैन हूंदी आहे।

जी साईं मुझा दुनिया में माण्हुनि खे जेकी नफ़्सियाती मामला ऐं मसाला थियनि था उनखे आमतौर ते डिप्रेशन कोठे वञे थो ऐं डिप्रेशन जा जेके मुख़्तलिफ़ सबब थियनि था जिन में को घरू सदमो दुख मुआशी मसाला या बेरोज़गारी बि उहे चंद सबब हूंदा आहिनि डिप्रेशन जा जंहिंजे करे उहा सूरत हाल पैदा थिए थी। पर जेकॾहिं को डिप्रेशन जो शिकार ऐं उन मंझां को बि सबब उन ते लागू नथो थिए त पोइ उन जो असुल सबब ॻोल्हणु ॾुखियो थी वञे थो। हक़ीक़त इहा आहे त डिप्रेशन जो हिकड़ो वाज़ियो सबब इहो बि थी सघे थो त काफ़ी असांजी ज़िंदगी में जेकी शयूं लागू आहिनि उन मां उन मर्ज़ खे ॻोल्हे सघिजे थो। मिसाल घटि निंड करण ऐं निंड घटि करण सां डिप्रेशन में बि वाध जो ख़तरो थींदो आहे ऐं काफ़ी जेको नशो इस्तेमालु करण सां जंहिंमें सिगरेट छिकण ऐं घणेई अरसे खां उहा ॻाल्हि कई वञे थी त सिगरेट छिकण जे करे बि माण्हू डिप्रेशन जो शिकार थिए थो ऐं इंटरनेट ते घणो वेहण जदीद दौर में नौजवान इंटरनेट ते फेसबुक ते

मोबाइल जो घणो इस्तेमाल करण सां बि जेके चीटिंग कनि था मोबाइल ते उन सां बि पंहिंजी सॼी राति सॼो ॾींहुं ऐं काफ़ी मोबाइल ते जेके गेमियूं अची वियूं आहिनि ख़ासि करे नौजवान नंढड़ा ॿार इहे जेके आहिनि पोइ बाद में इहे डिप्रेशन जा मरीज़ थी वेंदा। त असांजी गुज़ारिश इहा आहे त पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे नौजवाननि खे एहतियात करायो ऐं कोशिश करे पंहिंजो टाइम सां आराम कनि पंहिंजी महिनत कनि ऐं नशे जा आदि न थियनि ऐं घणो मोबाइल जा आदि न थियनि त इन मसइले खां बची सघनि था।

0: रंगों से रंग
1: GFM88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: काश हमारे पास वैसी गाड़ी
3: भी। चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

कहें बि तकलीफ़ में कंहिं बि डॉक्टर सां मुलाक़ात न कंदा आहिनि, ईअं पंहिंजो पाण कंहिं बि मेडिकल स्टोर तां दवा वठी इस्तेमालु कंदा आहिनि। हिनखे सेल्फ मेडिकेशन चइबो आहे। ऐं इन हिसाब सां ज़रई माए पंहिंजी जेके ज़रात वारा असांजा दोस्त आहिनि, हारी हिन जेके कुड़मी हिन जेके फसल बाग बाग़ीचा ऐं सब्जी वग़ैरह कनि था, त उन में जेके जीत ॼणा हूंदा आहिनि, उन में जेको यूरिया इस्तेमालु थींदो आहे उहो या दवाऊं जेके इस्तेमालु थींदियूं आहिनि, त उहे पंहिंजो पाण वठी कंहिं डीलर तां कंहिं दुकान तां इस्तेमालु कंदा आहिनि, पर कंहिं ज़रई माहिर सां कोई बि राब्तो न आहिनि कंदा। उन में उनखे उहो तमामु घणो नुक़सान थींदो आहे। पर जेकॾहिं हुनजी थोरी फीस हूंदी कंहिं बि ज़रई माहिर जी, त असांखे उहो वॾो फ़ाइदो पहुचंदो। उहो सॼो असांखे तरीक़ेकार ॿुधाईंदो, असांखे उन मेडिसन जो नालो ॿुधाईंदो, असांखे उन दवा स्प्रे जो नालो ॿुधाईंदो, त असां इस्तेमालु कंदासीं त असांखे घणो फ़ाइदो पवंदो। ऐं जेके मालवंत माण्हू आहिनि जिन वटि माल आहे, ढोर ढगा आहिनि ऐं पखी धारिन था, उन में बि असांजी मेडिसन इस्तेमालु थींदी आहे, पर उहा बि असां कंहिं न कंहिं स्टोर तां वञी करे

कहिड़ी तकलीफ़ आहे त असां ईअं बसि पाण दवाऊं वठी अचे माल खे। माल एॾो महांगो माल आहे, लखनि जे रक़म में हिन वक़्तु माल विकिरो थिए थो, पर असांजो उहो बीमार थी थो वञे वेंदो आहे। पर महिरबानी करे सेल्फ मेडिकेशन न कयो, पंहिंजो पाण कंहिं बि मेडिकल स्टोर दवा न वठो। जेकॾहिं असांखे थोरो बि बुखार निकिरंदो, खंघि थींदी, नमूनिया थींदी, बहरहाल मथे में सूर पवंदो, पेट में सूर पवंदो, असां वञी स्टोर जो पासो वठंदासीं, अबा हीअ तकलीफ़ असांखे हीअ दवा ॾे। ख़ुदा रा ईअं न कयो, कोशिश कयो पंहिंजे वेझे कंहिं सुठे डॉक्टर सां राब्तो कयो, पंहिंजे वेझे कंहिं सरकारी या नीम सरकारी कंहिं हॉस्पिटल में वञो, तमामु बहितरीन सुठा डॉक्टर वेठा आहिनि, उनखे पंहिंजी तबियत ॾेखारे तव्हां मेडिसिन वठो, पंहिंजो पाण जी सिहत खे तव्हां सिहत ऐब कयो। कोशिश कयो त जेका पाण सेल्फ मेडिकेशन कयूं था, मेडिकल स्टोर दवा वठंदा, इन खां पाण खे बचायो त पंहिंजी सिहत, पंहिंजा फसल, पंहिंजो मालमता, पंहिंजो जेको आहे सो फसल बहितर रहंदा।

जी साईं, मुंहिंजा जेको असांजो सवाल हो, जेका असांजी गुजारत हुई, उनखे पाण सिधो कंदासीं त उनजो सही जवाब कहिड़ो आहे। त उनखे सिधो ईअं कंदासीं, सुबुह साण सजणन, माना हिकिड़ो जेको सवाल जो सही जवाबु आहे उहो आहे रोंबो। यानी अक्सर त रोंबो बसरनि जो बि थींदो आहे, काफ़ी जेके सब्ज़ियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो बि रोंबो थींदो आहे। बहरहाल जेको बि रोंबो थींदो आहे उन में रोंबे में पोएं पेर वञिबो आहे। पर हिन वक़्तु असांजे सिंध जे जेके इलाइक़ा आहिनि, जेके ज़िला आहिनि, ख़ासि करे कश्मीर ज़िलो, जे कबा ज़िलो, शिकारपुर ज़िलो ऐं लाड़काणो ज़िलो, कंबर शिदादकोट ज़िलो ऐं दादू ज़िलो, बाक़ी कुझु ज़िलनि में फसल लही चुको आहे। जीअं असां ईअं खणी चऊं त सांगड़ आहे, पंहिंजो बदीन आहे, ठटो आहे, त उते सारनि जो फसल लही चुको आहे। पर असांजे इलाइक़े में हिन वक़्तु जेको सारनि जो रोंबो शुरू आहे, फसल जी पोखाई थिए पई।

पहिरें पंधु इहे पोएं पेरे वेंदा आहिनि पंधु कंदा हणन कयूं हथनि सां सारो ॾींहुं समंद रोंबो बि कंदा आहिनि ऐं अलाह अलाह बि कंदा आहिनि ॿाहिरि निकिरो पाणी बि हूंदो आहे पर मथां सिज जी तप गर्मी बि हूंदी आहे त उन में ईअं आहे त सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पेरें पंधु हणन कयूं हथनि सां सारो ॾींहुं समंद ऐं हथनि सां रोंबो बि कनि पिया अलाह अलाह बि कनि पिया हाणे कासम खणी कंधु निहारनि निमाणनि निणनि सां मथे ॾिसनि पिया सिज ॾे त अलाह करे टाइम थिए त जेका असांजो सिज पुठी ते पए पियो मथे ते सिज पए पियो त महल सां घर वञूं अलाह खे बि यादि कनि पिया रोंबो बि कनि पिया हथनि सां हण बि कनि पिया ऐं पोएं पेरे वञनि पिया त इन जो सही जवाबु आहे रोंबो या रोंबी कहिड़े बि सब्ज़ीअ जी कहिड़े बि क़िस्म जी रोंबी थिए थी या कहिड़े क़िस्म जो रोंबो थिए थो उहो पोएं पेर वञिबो आहे त असुल जेको सही जवाबु आहे उहो आहे रोंबो त इन जो जेको सवाल हुयो सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पेरें पंधु हण कयूं हथनि सां सारो ॾींहुं समंद त साईं मुंहिंजा असांजो जिन बि दोस्तनि सही जवाबु ॾिना काफ़ी फेसबुक ते बि असांजे दोस्तनि पंहिंजो नाला मोकिलिया आहिनि पर कंहिं बि कोशिशि न कई आहे कंहिं बि उको धोको न हयो आहे ऐं जेके असांजे इनबॉक्स में जवाब आया आहिनि उन्हनि दोस्तनि बि कंहिं बि कोशिशि न कई कंहिं बि उको धोको न हयो पर बिल्कुलु नाला तमामु घणा आया फोन कॉल ते बि नाला तमामु घणा आया कंहिं बि सही जवाब ॾिनो जिन दोस्तनि सही जवाबु ॾिनो आहे उन में असांजो हाजी सोरा मंगरियो ॻोठ सचिरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां लाड़काणा ज़िलो तमामु बहितरीन दोस्त जवाबु ॾिनो ऐं पहिरें नंबर ते असां हुन खे आणियूं पिया ऐं उन खां बाद में ॿिए नंबर ते असांजो जवाबु ॾिनो आहे ऐं फ़क़ीर उन बि तमामु बहितरीन तरीक़े सां तरतीब वार असांखे जेको जवाबु ॾिनो आहे तमामु सुहिणे अंदाज़ सां सॼो तरीक़ो असांखे ॿुधाईं ऐं इन्हनि टिन्ही दोस्तनि सही जवाबु ॾिनो आहे सही तरीक़े सां हुन तशरीह कई आहे जवाब बिल्कुलु सही न आहे अताला खान ईसा खिलवी जो ख़ूबसूरत नगमो आहे इन टिन्ही दोस्तनि जे नाम

जी समयन अताला ईसा खेल जी न खूबस नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबह जो वक्त पहुंचे पे पांजे पजण ते हयाती बखैर हयाती रही तवां सां जरूर मुलाकात थींदी तेसी ताईं पांजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुण जो कडींदा इजाज़त अल्लाह ने।

0: It's 11 a.m.
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6
0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account Bharosa bhi, Raftar bhi Bank Al Habib Rishta Bharose ka
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर
5: माजी वेल अमेरिकी फौजी इन मकसद के लिए वेढ़ी रहा ईरान एटमी हथियार न रखी सके ईरान के धमकी दई सके थी न लालच कुछ नुकसान बावजूद ईरान असराए थी आलमी ताकत तौर उभरियो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी चयो है ईरान अगु का वधिक मजबूत ईरानी रचा थियल यूरेनियम विक्रो नथो करे सके असीं दिफाई चैंपियन स्पेन दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में बुढ़ी एक शिकस्त दई आलमी चैंपियन बनी वो महादंगल में स्पेन के रांदीगर फेरन टोरेस शानदार गोल करे टीम के 16 साल बाद बो भेरो चैंपियन बनाए छो मैच जो फैसला है तो गोल इजाफी वक्त की बी हाफ में थो अर्जेंटाइन के गोलकीपर मार्टिनेज शानदार कारकर्दगी जो मुजाहरों कदे केतरा ही यकीनी गोल बचाया वर्ल्ड कप के 8 मैचेस दौरान का भी टीम स्पेन खिलाफ बरतरी हासिल न कर सकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन की फाथे टीम के ट्रॉफी पेश कई अर्जेंटीना के रांदीगर के चांदी जहा तमगा डना वह ग्राउंड में स्पेन के रांदीगर जो जश्न वर्ल्ड कप में शिकस्त अर्जेंटीना जो कप्तान लियोनल मेसी लुड़क लाड़े वेठो

0: पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाराई जो रुझान 100 इंडेक्स में 2000 का वधिक पॉइंट्स की घटताई रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,73,000 के पॉइंट्स से डिठो वो ओडेरो ला स्टेशन में मालगाड़ी से हादसे सबब मुअत्तल थियल अप एंड डाउन ट्रेक बहाल न थी सकिया ट्रेन्स मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल मुसाफिरन के रहल भाड़ा वापस कया वा मालगाड़ी के ट्रेक त हटाण रेलवे ट्रैफिक बहाल करण जो कोशिशों जारी कराकुरम तेजगाम ए पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत बी ट्रेन्स मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल ट्रेन्स की अचवन 24 कलाक तीन मुअत्तल रही फैजगंज में वधंदर बदमनी खिलाफ बहरान हाईवे बंद करे धरणो पुलिस खिलाफ नारेबाजी वकीलन व्यापारियों कौम परस्तन कारकुनन शहरन रोड से शामियान हणी धरणो हणी छो ट्रैफिक मुअत्तल थी वही अगवाणन जो चवण है फैजगंज जो अमन तबाह थी वो है रोजानो फुर ए चोरी जहा वाक पेश अची रहा पुलिस बदमनी से जब्तों आनन में मुकम्मल नाकाम थी वही है रहवासी गैर महफूज आन मुख्तलिफ इलाक में फुरल गाड़ियों ए सामान वापस कराए अमन बहाल कराए वे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: यार ही गोडन जो सूर है चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी है हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे थो
4: तपोई छा अन्या तई फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई थी
3: न यार छा वाकई फायदो करे थी
4: बिल्कुल अदा कुदरती जुजन सा तैयार कैल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंदा ते जल्दी जजब थी सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मा आराम पहुंचाने में मदद करे थी चेल जो सूर हुजे गोरन जो सूर कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
3: इस्तेमाल किए कजे
4: रुगो मुतासिर हंद ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वठ आई बुध जेकरे उमरे या हज ते वनन जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पान सा गड खणी वंजा
3: वाह पोए अजी वठींदस
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी ही पांजी वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो
5: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: कहती है अम्मी, मैं मनोज हूँ की जिंदगी में अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
2: It's 11:15 AM.
3: This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
6: GFM 91.6।

फंक सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक में है, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लेट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफल के खुदा खैरियत मौजूद और दवा के लिए खुदा खैरियत।

हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं, वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले

प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना जो कि हम इंक्लूड करने वाले हैं वो होगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap. Jildi infection se bachao ka behtareen zariya hai.
5: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
4: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मठियारी, और मठियारी की आवाज़
3: GFM 91.6।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जी एफ एम 91.6।
1: ओके जी, हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है मेरी?
2: जी मैम अभी आ रही है।
1: अभी आ रही है तो मुझे बताएं कि सागर भाई गाना सुनाएंगे।
2: जी मैम गाना सुना, गजल सुनाऊंगा आपको।
1: ओके सुना दे।
2: ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें सलाम कर दो, ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें सलाम कर दो, यही अपनी सुबह कर दो, यही अपनी शाम कर दो, ये झुकी झुकी निगाह दिल में सलाम कर दो, ये झुकी झुकी निगाह।
1: ओके जी, किसी को डेडिकेट करना है?
2: जी मैम दोस्त करे, दोस्त बैठे मेरे साथ, उसको डेडिकेट करना है।
1: कर
2: शौकत मीरानी, शौकत मीरानी,
1: जल्दी जल्दी
2: मेरे वाले। हाँ जी
1: जल्दी जल्दी,
2: जल्दी जल्दी तो नहीं, बस नहीं करना लेट कर।
1: अरे अरे कर दें कर दें, आप तो नाराज हो गए।
2: नहीं बाबा मैं नाराज नहीं होता, मेरी औकात है नाराज होने की।
1: नहीं नहीं बिल्कुल आप हो सकते हैं, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। और ये कैसी बात कर दी आपने, बड़ी अजीब सी। तो ये रहा आपका गाना और इसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे।

0: ओके जी, एक और कॉलर लेते हैं लाइन पे. हेलो. ओके जी, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है. हेलो. ओके जी, एक और ट्राई करेंगे और चेक करेंगे जी. हेलो.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं भाई?
1: आपका भाई नूर हुसैन. सलाम बदीन सिस्टर, क्या हाल? ठीक हो
0: जी? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं?
1: बस के बाद ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है.
0: ओके, गाना सुनाएंगे?
1: गाना है उसका शमन मिनाली का,
0: सुना दे.
1: नथो विसरी मुखा नथो विसरी,
0: ये तो उस दिन भी सुनाया था ना आपने.
1: समाज
0: उस दिन भी सुनाया था ना आपने. अब गाना चेंज करें ना.
1: गाना चेंज करूँ?
0: हाँ, गाना चेंज करें ना.
1: हो सके तो मेरा एक गाना.

ओके वेरी नाइस. किसी को डेडिकेट करना है जल्दी से? ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू. और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड.

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मुझे कहते हैं RJ रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी 1 बजे तक का है। आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू। फिलहाल हम आप लोगों की कॉल्स को एंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेगमेंट है सुर लगाओ गाना सुनाओ। और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो,
3: अस्सलामुअलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
3: बेटी बस अब्दुल वहीद जतो ही बात कर रहा हूँ, बेटी शाबिल से तालको जिलो सखर है बेटी रुखसार।
2: ओके जबरदस्त, मुझे बताएं गाना कौन सा सुनाएंगे?
3: बिल्कुल सुनाएंगे बाजी, तही हसीन जिंदगी की गुजरी वही या का।
2: हेलो, ओके जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है और ये क्यों हुई है आई लिटरली डोंट नो। लेकिन ये है कि हम एक और गाने की तरफ भी चलेंगे और इसी के साथ हम प्ले क्या करेंगे, मैसेजेस और कमेंट्स को एंटरटेन करेंगे। ठीक है जी, सो हियर कम्स अली जफर।

के अलावा अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच अब्दुल रजाक. और अब्दुल रजाक वंस अगेन. और इसके अलावा अली अकबर बिरोही हमें सुन रहे हैं. और हाले सुल्तान हमें सुन रही है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम हाले सुल्तान. इसके अलावा अली अकबर बिरोही वंस अगेन. हाले सुल्तान कहती है स्वीट आरजे आई एम लिसनिंग योर शो. थैंक यू सो मच हाले सुल्तान. आशी खास के लिए हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि प्रोग्राम बुधी राय आयो अहमद मुगल जो गीत बुधरायो. ओके.

अच्छा आज का टंग ट्विस्टर भी मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ. आज का जो टंग ट्विस्टर है ना वो कुछ इस तरीके से है कि आपने कह के दिखाना है मुझे जिस ताली की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, ये कहना है जिस ताली की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, बहुत सिंपल सा अगर समझ के सुनेंगे तो बोलने में आसानी होगी. तो ये है और इसी के साथ हम चलेंगे आगे और हम प्ले करेंगे एक और सॉन्ग जो कि हम कर भी रहे हैं. और मेरे ख्याल से ये जो हमने कर दिया है ये हमने करना नहीं था लेकिन ये हो गया है. अब ऐसा करेंगे कि हम एक और सॉन्ग की तरफ चलेंगे और वो जो नेक्स्ट सॉन्ग है उसी के साथ हम जाएंगे. न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक दोनों के बाद वापस आएंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: Express PM. This transact is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक Al Habib. रिश्ता भरोसे का.
4: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.
5: कैनेडा जी परदेही वजीर ए ईरानी घरू वजीर अज पाकिस्तान जो दौरो कंदा. ईरानी घरू वजीर इस्कंदर मोमनई ईरानी सदर जो खास पैगाम खणी अज पाकिस्तान पहुचंदो. वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए वफाकी वजीरन सां मुलाकातू कंदो. नायब वजीर आजम इसहाक डार ए अनीता आनंद विच में बि वफदन जे सतह ते ॻाल्हियूं थींदियूं. ईरान खे न धमकी ॾेई सघे थी न लालच. कुझु नुक़सान बावजूद ईरान असायती आलमी ताक़त तौरु उभरियो. ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त ईरान अॻु खां वधीक मज़बूत थी उभरियो आहे. ईरानी रचा थियल यूरेनियम विकिरो नथो करे सघिजे. स्पेन दिफ़ाई चैम्पियन अर्जेंटीना खे फुटबॉल वर्ल्ड कप जे फाइनल में ॿुड़ी जे मुक़ाबले में हिक तां शिकस्त ॾेई आलमी चैम्पियन बणिजी वियो. महादंगल में स्पेन जे रांदीगर फेरन टोरेस शानदार गोल करे टीम खे 16 सालनि खां पोइ ॿियों भेरो चैम्पियन बणाए छॾियो. मैच जो फैसलाइतो गोल इज़ाफ़ी वक़्त जे ॿिए हाफ़ में थियो. अर्जेंटीना जे गोलकीपर मार्टिनेज़ शानदार कारकर्दगी जो मुज़ाहिरो कंदे केतिरा ई यकीनी गोल्स बचाया. वर्ल्ड कप जे 8 मैच दौरान का बि टीम स्पेन ख़िलाफ़ बरतरी हासिल न करे सघी. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प स्पेन जी फातह टीम खे ट्रॉफी पेश कई. अर्जेंटीना जे रांदीगरनि खे चांदीअ जा तमगा ॾिना विया. ग्राउंड में स्पेन जे रांदीगरनि जो जशन. वर्ल्ड कप में शिकस्त ते अर्जेंटीना जो कप्तान लियोनल मेसी लुड़क लाड़े वेठो. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाराई 100 इंडेक्स में 2000 खां वधीक पॉइंट्स जी घटिताई रिकॉर्ड. 100 इंडेक्स 1,73,000 जे पॉइंट्स ॾिठी वई.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: ओके, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार। आकर मेरा साथ पूरी पूरी 1 बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मैसेजेस, कमेंट्स और कॉल्स के थ्रू। कॉल्स आप लोगों की हम एंटरटेन करेंगे। हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बोलो तो माने। और आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरह है कि जिस ताली की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताली की चाबी उस चाबी का ताला, ठीक है, ये कहना है। और देखते हैं कि कौन कह पाता है आज का टंग ट्विस्टर। हम प्ले करेंगे गाना और गाने के साथ टंग ट्विस्टर। और जी, सो गाना मेरे पास मौजूद है जी बिलाल सईद की आवाज में। इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और इसी को सुनते सुनते हम आप लोगों की कॉल्स को भी एंटरटेन करेंगे।

0: तेरे निकल तो पर जी कॉलर मेरे साथ लाइन पे मौजूद है और चेक करेंगे जी कौन है कहाँ से। हेलो
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: जी हैदर बख्शी शेर बात कर रहा हूँ, तालका संदरी जिलो मीरपुर का।
0: हैदर बख्शी भाई मुझे ये बताएं, टंगटो शेर सुनाए बोलेंगी?
1: जी हाँ।
0: तो बोले
1: जी चाबे एक बार रिपीट करो।
0: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
1: जिस ताले की चाबी उस ताले ये चोरी ऑनलाइन करेंगे
0: क्या करें?
1: एक बार रिपीट।
0: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
1: जिस ताले की चाबी ताला।
0: ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। और कुछ कहना है? और कुछ कहना है? ओके कॉल ड्रॉप हो गई है। Twinkle, twinkle, twinkle, twinkle like a shining star. You make us a Monday. I wonder. Okay, G.

सेगमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करते ही जाएंगे जो कि मुझे बहुत सारे आप लोगों के रिसीव होते जा रहे हैं। गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप पी रुखसार क्या हाल है? आज मेरी छोटी सिस्टर ततहीर की बर्थडे है, उसे विश कर दें। हैप्पी बर्थडे टू यू ततहीर, आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक और बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप अपनी आने वाली जिंदगी में हमेशा हमेशा कामयाब होती रहें और आपकी उम्र दराज हो। ठीक है, तो विश कर दिया।

और इसी के साथ मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा गाना प्ले कर दिया जाए और फिर उसके साथ लाइव कॉल्स को एंटरटेन किया जाए. अगर तो ब्रेक पे जाने से पहले कॉल वाला जो इश्यू है वो खत्म हो जाता है.

और गाना चेंज करने का कहा था मैंने. सो गाना चेंज करते हैं जी. एंड नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल बाय साहिर अली बग्गा. आजकल साहिर अली बग्गा तानों वाले सॉन्ग्स गाने लगे हैं, तो इनका एक और नया तानों वाला गाना आया है. आए मिलके सुनते हैं और इंजॉय करते हैं.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
4: ये मुअसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जूट विटामिन ई बी माइक्रोबीट फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
6: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
6: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: FM 88.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: त पोइ तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां ऐं आराम जो ऐसा। जी हा, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल,
5: उसी खिते की बन
4: जीए एक्स।

कॉलर और वो है हैदर बख्शर जिन्होंने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर को बोला और बहुत अच्छी कोशिश की। तो आज के जो विनर हैं वो है जी हैदर बख्शर, जितनी हम कॉल्स ले सके उसमें, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ हैदर बख्शर ने काफी ज्यादा अच्छा टंग ट्विस्टर बोला, बहुत अच्छी कोशिश की और आज के विनर हैं।

मोहम्मद मरी बलोच कहते हैं कि बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू. अच्छा, बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू, ठीक हो गया जी, बर्थडे विश भी हो गया. और इसके अलावा जी आशी खास के लिए को प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच. और ये कुछ कॉमेंट जो कि अब तक के बहुत सारे लोग रह चुके थे उनके अब इंक्लूड हो चुके हैं जी. और हमें ज्वाइन किया है जी सफदर बलोच ने मोरो से, कहते हैं आप किसी का मैसेज पढ़ना, किसी का मैसेज पढ़ना मतलब ओके जी, मैसेज आपका मैंने पढ़ लिया है, थैंक यू सो मच. और किसी का मैसेज मतलब आपका मैसेज हमने पढ़ लिया है और आगे मिसिंग पार्ट है. और इसके अलावा जी गाना हमारा पूरा खत्म हो चुका है, मैं ढूंढ रही थी, मतलब मैं सोच रही थी कि बैकग्राउंड में कुछ चल क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं चल रहा कि हम गाना चेंज करेंगे.

Available now on iTunes. Oh.

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 1 PM. This time check is brought to you by
4: Fakiri Dex Ointment.
5: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
1: Apna sheh.
6: Ab aap sunenge GFM network par.
7: Pandaro kanda Irani gharu wazir Iskandar Momni Irani sadar jo khas paigham khaniya jo Pakistan pahunchando. Wazir Azam Shahbaz Sharif, Field Marshal Sayyid Asim Munir aur wafaqi wazirin sa mulaqatun kando. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ए अनीता आनंद विच में बे वफदन के सतह से गालियों थी। ईरान के न धमकी दई सके थी नई लालच कुछ नुकसान बावजूद ईरान असरायती तौर उभर ईरानी पद

वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त ईरान अॻु खां वधीक मज़बूत थी उभरियो आहे, ईरानी रचा थियल यूरेनियम विकिरो नथो करे सघे। स्पेन दिफ़ाई चैंपियन अर्जेंटीना खे फुटबॉल वर्ल्ड कप जे फाइनल में ॿुड़ीअ जे मुक़ाबले में हिकु तां शिकस्त ॾेई आलमी चैंपियन बणिजी वियो। महादंगल में स्पेन जे रांदीगर फेरन टोरेस शानदार गोल करे टीम खे 16 सालनि खां पोइ ॿियो भेरो आलमी चैंपियन बणाए छॾियो। मैच जो फैसलाइतो गोल इज़ाफ़ी वक़्त जे ॿिए हाफ़ में थियो। अर्जेंटाइन जे गोलकीपर मार्टिनेस शानदार कारकर्दगी जो मुज़ाहिरो कंदे केतिरा ई यकीनी गोल्स बचाया। वर्ल्ड कप जे 8 मैच दौरान का बि टीम स्पेन ख़िलाफ़ बरतरी हासिल न करे सघी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन जी भारतीय टीम खे ट्रॉफी पेश कई। अर्जेंटीना जे रांदीगरनि खे चांदीअ जा तमगा ॾिना विया। ग्राउंड में स्पेन जे रांदीगरनि जो जशन। वर्ल्ड कप में शिकस्त ते अर्जेंटीना जो कप्तान लियोनल मेसी लुड़क लाड़े वेठो।

पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाड़ आई। 100 इंडेक्स में 2000 का वधिक पॉइंट्स की घटाई रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,73,000 के पॉइंट्स से डिठो वो। उरूर लाल स्टेशन से मालगाड़ी से हादसे सबब मुअत्तल थियल अप एंड डाउन ट्रैक बहाल नथी सकिया। ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल मुसाफिरन के रहल भाड़ा वापस कया वा। मालगाड़ी के ट्रैक ता हटाण ए रेलवे ट्रैफिक बहाल करण जो कोशिशों जारी। कराकुरम तेजगाम ए पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत बी ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल। ट्रेन की अचवन 24 कलाकन ताई मुअत्तल रहंदी। कुंभ वेझो पढ़ियल नारी पुरस्कार तौर गोलियों लगण सबब मारजी वही। नौजवान जख्मी गोठ छतल कलोड़ो में 19 महीने की रजिया दाल अब्दुल समद कलोड़ो हयाती विजाए वेठी। फायरिंग के नतीजे में अली मदद कलोड़ो जख्मी थी पो। लाश ए जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कर पुलिस जो चवण है वाक्य बाबत कतुल तोड़े खुदकुशी जा चुबोल जांच कर रहा आयो। सिंध में पानी की खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा। घोटके में 10 रवाह के आबादगार सीडा डायरेक्टर के ऑफिस अगर एहतजाजी मुजाहरो कैरब नाथन शाह में हारन आबादगार केटीएन न्यूज के ऑफिस अगर निठहण उस में धरणो हो। दखण में निमशाख के आबादगार पानी की खोट खिलाफ एहतजाजी मुजाहरो सन में शाह आवेस कैनाल के आबादगार एहतजाजी रैली कढ़ी। लाखा लिंक रोड से धरणो हणी छो। आबादगार चवण है आपाशी मलदार पानी मुंड के आबादगार के विक्रो कर रहा है। जमीन के पानी न मिलने सबब लखे रुपये नुकसान थी रो है। नोटिस वी पानी डारे वे।

दादू में म्यूजिक टीचर्स जे उम्मीदवारनि जो ऑर्डर न मिलण ख़िलाफ़ गाए वॼाए एहतिजाज। म्यूजिक टीचर्स ज़ोल शरनाइन सां कलाम गाए अनोखो एहतिजाज रिकॉर्ड करायो। एहतिजाज में तुंहिंजे कूड़नि कूड़नि वाइदनि ते एतबार कयम ऐं ॿियनि कलामनि जी गूंज। उमीदवारनि सजा सुमरो, जावेद अबासी ऐं ॿियनि जो चवण आहे त 319 म्यूज़िक टीचर्स जा खानदान 3 सालनि खां बुख बदहाली जो शिकार आहिनि। नोटिस वठी ऑर्डर्स ॾिना वञनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
4: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: Brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin to Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बिल्कुल जी आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं लिसनर्स को रीजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर जो RJ एंड DJ सिद्रा मुस्कान।

पर आप लोग भी हमारे साथ मौजूद होते हैं पर आप लोग भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम और बहुत सारी वाली बातें करते हैं, साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे गाने भी सुनते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बिल्कुल जी आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं इसके लिसनर्स फॉर रीजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर जो आरजे एंड यू डीजे सुद्रा मुस्कान, मामियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करती है भैया सुद्रा, तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगाज से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही खूबसूरत से कलाम के साथ। तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हम सुनते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा कलाम, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डीज़ स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज़ स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

0: उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में बिल्कुल जी आप लोगों के लिए कितनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं जिनसे आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं उनका इस्तेमाल करके वैसे लोगों का इस्तेमाल करती ना उनका फायदा उठाते हैं बिल्कुल वैसे ही लोगों को जरा साइड पे रखिए और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का फायदा उठाइए ठीक है उन्हें इस्तेमाल कीजिए ओके जी तो बहुत ही शानदार क्वालिटी की प्रोडक्ट है मैं तो आप लोगों को बताती रहती हूँ बस आप ही का दिल है जो अभी तक नहीं मान रहा तो जल्दी कीजिए जल्दी से आपने जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है जैसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई आप कितने अच्छे प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर चुके हैं और उसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो वो भी बताएंगे कि कैसे अवेलेबल कराएंगे और साथ ही साथ अगर आप सवाल को फॉलो करना चाहते हैं टॉपिक को फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने आज आप लोगों से पूछा है कि आप मुझे बताइए कि एक कामयाब इंसान और एक नाकाम इंसान में क्या फर्क होता है ये जरा फर्क आप बताएंगे कि क्या फर्क है और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाएंगे ओके जी यहाँ पर आशिक खास के लिए हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते प्यारी मेजबान साहिबा उम्मीद तक खुश हूँ प्रोग्राम बुधी रहा आयु नाचीज आशिक खास के लिए मोहम्मद अली जमाली हिजब जान बिरोही सिंधी रेडियो लिसनर क्लब नवाब शाह खां असा सगड़ मौजूद है तो मबदू आए तवाजो प्रोग्राम बुध पया अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद है वालेकुम असलम सलामत रहे प्यारे भाई आप भी खुश आमदीद कहते हैं वहीद वफाई हमारे साथ ही वालेकुम असलम सिद्रा जी क्या हाल चाल है आगे में ठीक कहते हैं आपके माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन है और जिका बाबा से आप हमें सुन रहे हैं थैंक यू अली मुर्तजा हमारे साथ मौजूद कहते हैं सलाम गुड आफ्टरनून वालेकुम असलम गुड आफ्टरनून और आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद कहते हैं असलाम वालेकुम आप कैसी हैं मैं ठीक आप बताएं अनवर कहते हैं असलाम वालेकुम हाय छा हाल है तमाजा आप ठीक आयो जी मैं ठीक था बुधायो कहते हैं माशाल्लाह आपका शो बड़ा जबरदस्त है ओके जी आपको भी खुश आमदीद रिहाना खान हमारे साथ हैं बखर से रिहाना खान बखर से आपको वेलकम कहा जाता है और उसके अलावा हैं जी वासु भाई हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम वासु भाई कैसे हैं आबिद हमारे साथ हैं जी आबिद भाई हेलो कहते हैं गुड शो थैंक यू और उनका अलावा आदिल हुसैन तवा गाने जी लिंक शेयर कई आ ठीक है हलाईदासी उनका अलावा चाचा खाले जुड़ी जो हमारे साथ ही वालेकुम असलम बेटा सिडो हाउ आर यू हो फाइन यस आई एम गुड आप बताएं कैसे हैं बख्त अली सियाल हमारे साथ हैं हेलो जी शुएब अहमद मेथलू हमारे साथ ही वालेकुम असलम आरजी सिद्रा मुस्कान गुड शो सो ब्यूटीफुल वॉइस थैंक यू कहते हैं जीशान रोकड़ी का गाना लगाएगा बिल्कुल जी लगाते हैं अमान मियो हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम मैं ठीक हूं जी आप बताएं आप कैसे हैं उनका अलावा आदिल कहते हैं आज कौन सा टॉपिक सोचकर आई हैं मैंने बता दिया आप जल्दी से बताएं इसका जवाब क्या होगा अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर योर प्रोग्राम आर वेरी गुड एंड हाई क्वालिटी विच इज व्हाई वी लिसन टू ऑल ऑफ देम विद ग्रेट इंटरेस्ट द वे ब्यूटीफुल Grant you success, our prayers are always with you. Thank you, G. Anwar bhai, bahut shukriya. Chacha Khalid kehte hain shukr alhamdulillah. Signals settable on Facebook pe. Issue ho gaya tha. Lekin aaj theek hai. Assalam alaikum aur salamat hai. Pyari jaan kaisi hai? Pyari jaan. Khalid kehte hain. Mere ird ki baat. अल्लाह ये क्या कह रहे हैं आप चलें जी इतना भी इंसान को अपनी जिंदगी में दुखी नहीं होना चाहिए थानी हमारे साथ मौजूद है जी वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद जमान के जैसे तब बुआ जी आपको बहुत शुक्रिया और मुखलिस मोहम्मद हाशिम सुमरो भाई आपको खुश आमद थैंक यू आप हमारे साथ अब्दुल रजा सॉन्ग लाइन नासिम बाबा का उनके अलावा अगर तुम इस्तेमाल ना ही करे तो तुम जल्दी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट तुम्हें मिलन था मुनासिब कीमतों में व्हाइट एज वारंट जी तो यह खास गाल आई जी तुम्हें बुधाईंदी आया तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तुम्हारे लिए हर तरह जो अवेलेबल है यानी ये भी ना खा पोई अप्लाई करना ही तवा की तवाजी खूबसूरती मिली वेंदी तो खूबसूरत रहो ए खूबसूरती हासिल करो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ए जे स्किन ब्यूटी माल कंदा रहो टाइम थे वाई होटी ना तवा इते बैठे मां सफा वेट यू स्टे कनेक्टेड इन स्टेशन जे स्किन ब्यूटी शी ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए
1: जे हैदराबाद
2: 30 check if
3: diamond glow bleach taiyar kayal jekade kudrati nikhar saaf naram ai roshan chehro hai mein glow bleach jodo ki tak
2: hai
3: apex
2: ointment kisi walu ki
3: ointment
2: mutasira
3: jagah par aasani se jazb hokar
2: dard soze
3: akdan jane mein madad deta hai
2: aasabi dard jodo ka dard
3: gardan aur kamar ki takleef
2: patthon ke khichao mooch
3: chot purane zakhmon ke dard
2: और जल्दी जलन में मुफीद
3: मुतासरा जगह पर दिन में दो से तीन मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का

0: सास पाए,
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम। वाइट एज ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा, वाइट चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सुंदर जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सुंदर जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
2: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी, बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान, रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज़
4: GFM।

एक लड़की के लिए इतना ही काफी है भाई। मेरी जवानी तेरे उत्ते निसारे, तू मेरी लगदी, ओ तू मेरी की लगदी, जियो करे, ओ तू मेरी की लगदी, ओ तू मेरी की लगदी। बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुन रहे हो, साथ साथ प्रोग्राम है जी वाइट एज एंड ट्री स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ट्री स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और जनाब जी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए ना, कैसी कंजूसियां हैं ये एक तो प्रोडक्ट नहीं ले रहे, दूसरा पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं कर रहे, अरे भाई कैसे चलेगा, ये मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए। ओके, साथ साथ बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर अनवर अली कहते हैं कि टॉपिक जो कोशिश करेगा वो कामयाब होगा और जो कोशिश नहीं करेगा वो नाकाम होगा। ओके ओके जी, कुर्बान अली कमरानी हमारे साथ है दादू सी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह खालिद कहते हैं कामयाब इंसान तब बनता है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करे और नाकाम वो जो बस दूसरों पर क्रिटिसाइज करते रहे, खुद डोंट स्ट्रगल इन लाइफ, योर टॉपिक आंसर। ओके, देखिए मैंने तो बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं बन पाते है ना। ओके जी, उदास लड़की कहती है इस टॉपिक का जवाब बड़े लोग देंगे, हम बच्चे चुप करते हैं। अरे भाई और कितनी बच्ची बनोगी तुम। अरे वडी थी भैया लाइ छे। आदल कहते हैं कामयाब ऐं नाकाम इंसान में फर्क नतीजे जो न सोच ऐं अमल जो आ दुनिया की नजर में, दुनिया की नजर में ऐसा समझूं था ओगरी कहते हैं कामयाब इंसान ही मुश्किल आहे पर रस्तो निकरन दो, नाकाम इंसान मुश्किल आहे ते करे मां न करे सघंद से। कामयाब मानो मसलन के सबक समझे थो, नाकाम मानो उन के रुकावट समझे थो। आई बियो अमल जो फर्क आहे। ओके जी, बहुत एक लंबा सा चौड़ा आपने कमेंट कर दिया है और मतलब बात जो है वो आपने बिल्कुल सही कर दी है, सो क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपको। वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और लिखते हैं आदिल, वो जैसे गुड बॉय बोल दी फराज, खराब इंसान भी अच्छा बन सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है। बिल्कुल जी, इस चीज के ऊपर मैं भी बिलीव करती हूँ। देखिए बन गए हैं ना। अच्छा मुखलिस हाशिम सुमरो भाई हमारे साथ हैं, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और हैं जी हमारे साथ अमान मीनू कहते हैं इट्स सो गुड, थैंक यू। अली मुर्तजा कहते हैं ओके जी ओके। मामा समान आपने टॉपिक के ऊपर बात कर दी है, क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। दर्द दिल कहती है कैसी है चंदा, मैं ठीक हूँ आप बताएं प्यारी आप कैसी हैं। और दर्द दिल कहती है कभी कभी इंसान का मजबूत होना ये नहीं कि उसे तकलीफ नहीं होती, बल्कि ये होता है कि वो हर तकलीफ के बाद अपने दिल को अल्लाह के सुपर्द करना सीख लेता है। असल सुकून लोगों के बदल जाने में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने में होता है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात। ओके जी, तो मेरी की लग दी क्या ही ट्रैक था, बहुत खूबसूरत। एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, जरा हम सुनेंगे, मुमताज मलिक का गाना होने वाला है, चार चातों के समझाया दस्त सही। ओके जी, गाना सुनेंगे और आपको बताएंगे, माँ भी छा छा तहाँ के समझाया बाबा, तहाँ खूबसूरती किथे किथे लिखे लाए, तवाज लकीदा भला भला मार्केट में प्रोडक्ट अची वया, छा छा समझाया, समझो ही न था।

अच्छा माने तव्हां खे कंहिं शइ जी ख़बर ई कोन्हे का, ईअं न कयो बाबा, ईअं न कयो, हाणे वॾा थी विया आहियो ऐं अञा ताईं अगरि तव्हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल नाहे कयो त बाबा जल्दी इस्तेमाल कयो। तव्हांजे एरिया में मिलनि था कोन प्रोडक्ट, तव्हां इहो बि लाज़मी पुछा कजो। जे तव्हांखे आसानी थी वञे, तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वञो, उतां इज़ीली वठी अचो, समझो था।

असा समझी आसी बाबा ही जेका गाल है ना तुझे सामू तुझा रही मुझे सामू मुझा रही या गाल थोड़ो टाइम थे वाकई असा समझी वया आयो अड़ा मू खोड़ असाजे आसपास आसपास पासो करण घुर्जे ये ना

जी अरीबा हमारे साथ। यदि आप उस दिन कह रही थी जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। ओके जी, और सजाद अली जमाली हमारे साथ नवाबशाह से कहते हैं सॉन्ग प्ले करें ममताज मौलाई, ममताज मौलाई हले तो बाबा बुद्धू। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर है, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। और अब्दुल्ला महर कहते हैं बाजी शो नाइस है, वाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गानो थोड़ो नंढड़ो आहे हिन जे थोरो थोरो पोइ ते करणो पियो, टाइम थियो बाबा न्यूज़ ब्रेक जो, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे, ठीकु आहे। वापसी जल्दी मोटी तव्हांजी अचूं था, तव्हां खाली न वञो, हिते वेठा हुजो। मां सफ़ा ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बनंदा रहो जे तव्हां बि सुणा थियो समझो नी।

0: नताशा मटियारी और मटियारी की
1: जी।
2: एनएल जैसे क्रीम करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: अब आप सुनें।

अमेरिका जा ईरान अमेरिकी फौज जे सेंटकॉम जो चवण आहे त ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मिज़ाइल्स ऐं ड्रोन्स लॉन्च साइट्स खे निशानो बणायो वियो। ईरानी मीडिया मुजिबि तबरीज़ चाबहार सिरक हरमुज़गान बूशहर

0: कोनार्क में अमेरिकी सदर ट्रंप जो चवण है ईरान से हमला अमेरिकी फौजन के मारण जो रद्दअमल है। फौजन के मारजी वन ढो दुख थो मारजी वेल अमेरिकी फौजी इन मकसद के लिए वेही रहा हुआ तो ईरान एटमी हथियार न रखी सके। अमेरिकी हमलन के जवाब में फौजी अड्डन से हमला के 21वें मरहले में उर्दन के अकबा एयरपोर्ट से अमेरिकी C-17 ट्रांसपोर्ट ए P-8 कमांडन जहाजन के निशान बनाया। क्वैत के अली सालिम अमेरिकी फदाई अड्डे से ड्रोन हमलो किया। रेडार गोदाम MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह किया वह। अमेरिकी कार्रवाई जारी रहने तीन आबना हरमुज महफूज न रह पासारण इनकलाब पारा आबना हरमुज में ब तेल जहा जहाज तबाह कर शाम के इलाके अलतनफ में अमेरिका के कमांड सेंटर से हमले की दावा। उर्दन हुकूमत जो चवण है ईरानी हमलन सबब पानी साफ करने वाले प्लांट्स समेत शहरी हंधन के नुकसान पहुंतो। ईरान के न धमकी दई सके थी नई लालच कुछ नुकसान बावजूद ईरान असराए थी आलमी ताकत तौर उभर। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इलाक़ी चवा है ईरान अगु का वधिक मजबूत थी उभरियो है। ईरानी रचा थे यूरेनियम विक्रो नथो करे सके। सिंध में पानी की खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा ए धरना। लारकाण में घड़ी यासीन के आबादगार इरीगेशन कॉम्प्लेक्स में इंजीनियर के ऑफिस बहरा धरनो। रोहड़ी में काजीबाह के पुछड़ी के आबादगार एहतजाजी मुजाहरो किया। घोटकी में डहरवाह के आबादगार सीडा डायरेक्टर के ऑफिस अगैं एहतजाजी मुजाहरो किया। कैरप नाथन शाह में हारन आबादगार KTN न्यूज के ऑफिस अगैं निटण उस में धरनो हो। दखण में निमशाख के आबादगार पानी की खोट खिलाफ एहतजाजी मुजाहरो किया। सन में शाह आवेस कैनाल के आबादगार एहतजाजी रैली कढ़ी लाखा लिंक रोड से धरनो हो। आबादगार चवण है आपाशी अमलदार पानी मुंड के आबादगार के विक्रो कर रहा है। जमीन के पानी न मिलने सबब लखे रुपये जो नुकसान थी रो है नोटिस वी पानी डारो वे। उडेरोला स्टेशन में मालगाड़ी से हादसे सबब मुअत्तल थियल अप एंड डाउन ट्रेक बहाल न थी सकिया। ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल मुसाफिर के रहल भाड़ा वापस किया वह। मालगाड़ी के ट्रेक त हटा रेलवे ट्रैफिक बहाल करने जो कोशिशों जारी। कराकरम तेजगाम ए पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत बी ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल ट्रेन की अचवन 24 कलाकन तई मुअत्तल रही। कराची के इलाके नाजमाबाद में बदी अगु अगवा कल 2.5 वर्ष जो बारड़ो बाजाब। पुलिस जो चवण है बारड़े अजान के ठट्टो वेझो कार्रवाई कर बाजाब कराया वो। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की पुलिस टीम के शाबाशी। आईजी सिंध चे तो वाकई की शफाफ जांच कर अगवा में मुलविस जवाबदार गिरफ्तार किया वन। दादू में म्यूजिक टीचर्स के उम्मीदवार ऑफर ऑर्डर न मिलने खिलाफ गाय वजाए एहतजाज कर। म्यूजिक टीचर जोहल शरनाइन से कलाम गाय अनोखो एहतजाज नोट कराया। एहतजाज में तुझे कूड़न कूड़न वायदन से एतबार कयम ए बेन कलामन की गूंज। उम्मीदवार सजाद सुमरो जावेद अब्बासी बेन जो चवण है 319 म्यूजिक टीचर्स का खानदान 3 साल का बुख बदहाली जुश।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार ही गोडन जो सूर है चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलन वेहन हर कम दुख्यो लगे थो।
4: तपोई छा अन्या तई फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
3: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा, कुदरती जुजन सा तैयार कयल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंदा ते जल्दी जज़ब थी। सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे गोरन जो सूर कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्दिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम।
3: इस्तेमाल किए कजे
4: रुगो मुतासिर हंद ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वठ आई बुध जेकरे उमरे या हज ते वनन जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा।
3: वाह, पोए अजी वठींदस
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजी वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
6: उसी बनी है आवाज
5: GAFM नेटवर्क
6: सिंध की आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हमेशा भाई परेशान रहते हैं कि भाई हमारे लिए जो होते ना प्रोडक्ट सही से तैयार नहीं किए जाते, हमारे लिए प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होते और उनकी स्किन ऐसी होती है कि भाई अगर वो कोई भी प्रोडक्ट का इंतखाब कर लें, कोई भी प्रोडक्ट लगा लें तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और खराब होने के बाद

जी क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना सुन रहे हैं। यहाँ पर एम अंसारी लिखते हैं कि हमारे लफ्जों से सीते हैं कुछ लोग अपने दिल के जख्म, हमारे लफ्जों से सीते हैं कुछ लोग अपने दिल के जख्म, और कुछ को हम चुभते हैं सुई की नोक की तरह। आई ली और जो कहते हैं कि यासिर अलीशान अलीजा अलिशबा हिरा भी यू को सलाम और हेलो कह रही है। हेलो और जी और भी लोग हैं जिनमें आरफा हैं, रिमशा हैं, उरूसा, फरहान, शकील का भी सलाम एंड हेलो। वालेकुम अस्सलाम एंड हेलो।

韩剧。ओके जी, हिदायत वाला आपने जो गाना बोला है ना, वो थोड़ा सा इंडियन गाना है तो इसलिए नहीं लगा सकते। ओके जी, वैसे आज एक हाँ लगवा के ये रहेगी, वो भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने गए हैं। तो अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जी लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। दर्दी दिल आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू स्वीटी। सजाद हुसैन सुमरो हमारे साथ है। नजरी कहती है कि अगर वो अच्छा, कहती है कि अरे यार वो सुना है ना, गर्ल्स जितनी भी बड़ी हो जाएं बट वो हमेशा छोटी ही लगती हैं और हमसे छोटी ही रहेंगी। अच्छा, हमेशा छोटी ही रहेंगी, ऐसा क्यों भला? वो कभी ना कभी तो औरत बनेगी ना।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपने कौन सा प्रोडक्ट लगाकर देखा जी, बताइए जरा हमें भी। और यहाँ पर शोनी कहती आप ही जान में वापस आ गई, आप ही कल वापस आई हो हम सब। चलिए जी, क्या बात है, आपकी छुट्टियाँ अभी तक चल रही हैं, एंजॉय करें भाई। और अली मुर्तजा कहते हैं टॉपिक पर, मेरे नजदीक सक्सेस का मतलब काबिलियत है, इंसान काबिल है तो सक्सेस उसके पीछे होती है, अगर काबिल नहीं तो वो सारी उम्र सक्सेस के पीछे भागते फिरते हैं। कह सकते हैं।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network,
6: GFM 88 Network,
1: सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद दे थी।
2: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणन जख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़कीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़कीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: मुझे अच्छी लगी
7: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
8: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
7: GFM 88 नेटवर्क
8: सिंध की आवाज।

सुनो जाना महशरे ख्वाबो ख्यालात लिए बैठे हैं, महशरे ख्वाबो ख्यालात लिए बैठे हैं, तुमसे उम्मीदें मुलाकात लिए बैठे हैं। महशरे ख्वाबो ख्यालात लिए बैठे हैं, तुमसे उम्मीदें मुलाकात लिए बैठे हैं। तुम नहीं तो अजब आलमे तारीखी है, सुबह होती ही नहीं हम रात लिए बैठे हैं। ऐसी क्या बात है, दम भर के लिए आ जाओ ना तुम। ऐसी भी क्या बात है, दम भर के लिए आ जाओ ना तुम। कब से हम छोटी सी एक बात लिए बैठे हैं। आप बेरंगी मौसम से ना घबराइए के हम, आप बेरंगी मौसम से ना घबराइए के हम, आपके वास्ते बरसात लिए बैठे हैं, आपके वास्ते बरसात लिए बैठे हैं। मशरे ख्वाबो ख्यालात लिए बैठे हैं, तुमसे उम्मीद मुलाकात लिए बैठे हैं। अरे देखो ना, तुमसे उम्मीद मुलाकात।

भाई जान, आपका मैसेज मुझे जरा समझ नहीं आया। पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। 78 मोड़ी से राजा स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो आपने डायल करना है। नंबर्स को जरा नोट कीजिएगा क्योंकि नंबर जरा चेंज हो चुके हैं, तो नंबर्स को नोट कीजिए ताकि आप जो है अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सके। और

भाईजान आपका मैसेज मुझे जरा समझ नहीं आया, पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। 78 मोरी से राजा हमीर चंद हैं, किशोर कुमार हैं, हीरा भाई हैं और हैं जी अकबर कुंभर। अच्छा गानो तो हाँ चाहिए, गानो हलाइंदा सी बिल्कुल भाजू मोहब्बत वन प्रोग्राम बुध पया और सोनी की थी आप ही जान में चले ठीक है ओके। अच्छा फेसबुक पर प्रोग्राम सही चल रहा है, बताएं जरा मुझे।

बिल्कुल जी, रमजान अली भाई हमें सुन रहे हैं। रमजान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। अमीन मियू हमारे साथ हैं, वेलकम जी। अनवर भाई आपने पोइट्री लिखी है, खुद को इतना कीमती बनाओ कि खरीदने वाले को डर लगे। बिल्कुल जी, सही बात है। अली अकबर बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं, विलेज मोहम्मद उस्मान बिरोही सकरण से। वालेकुम अस्सलाम भाईजान को खुश आमदीद कहा जाता है। साजन कुमार हमारे साथ हैं फ्रामीपुर खान। ओके जी बिल्कुल, दाऊ करण मां कुछ कौन मिलंदई, बस तमा पांजी स्किन ते ख्याल करो, स्किन जो ध्यान रखो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले तो तमा नंबर से राबतो करो और इनका मालूम वो भाईजान असा काढ़ी वनू असा किथा वटू तक इस्तेमाल कर तक मिली वेंदी आए तो तक लाजमी लगान घुर्ज। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सफा सोने तरीके से तैयार कई वही है, मेडिकेटेड फार्मूलो है, लाजमी ट्राई करे दिसो मजो अची वेंदव। अच्छा नदड़ी कहती है कि मेरे साथ मेरा बंदर भाई भी आपका शो सुन रहा है, सुकून से शो भी नहीं सुनने दे रहा। चलिए जी अच्छा, हसनैन मलहा आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थला कहते हैं ट्रॉपिक कैंसर कामयाब, इंसान के पीछे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का हाथ होता है, इंसान के पीछे दूसरी क्रीमों का हाथ होता है। सही बात है वैसे। मोहम्मद नीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज से, वालेकुम अस्सलाम भाई जान, खुश रहें। और शाहिद अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये हमारे साथ है रुखसार मरीन मीरपुर खास से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आप ही सदरा शो सुन रहे हैं आपका, आज मेरी छोटी सिस्टर खुश रहें सलामत रहती रहें, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, और आप हमारा शो सुन रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। और वफा शहजादो मक्सी हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम पसंद है जी, खुश रहें, थैंक यू, आप भी खुश रहें। अली अकबर बिरोही भाई आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और चने सर वालेकुम, दर्द दिल क्या कहते हैं, कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियां असल फर्क और वसाइल

नहीं होता, रवैये का होता है। ये फर्क बाहर बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यही छोटा सा फर्क किसी को बहुत आगे ले जाता है और किसी को वहीं रोक देता है। चंदा मुझे तो यही समझ रहा है। चले जी, बहुत बेहतरीन, नाइस। ओके जी, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया।

अब्दुल गफ्फार में सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम जी, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। चाचा खाली जूनी जो आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और अनवर भाई कह रही हैं आपकी आवाज तो बड़ी प्यारी है, बहुत शुक्रिया जी। अब आपको याद आया। दर्दे दिल कहती हाय संदा, इतनी अच्छी पोएट्री सुना दी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। थैंक यू नजीबुल्ला बिरोही, कहते हैं कैसी हैं मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार हमें सुन रहे, जी वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको। और नखा अलावा हमारे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, वाकई पता नहीं ये कब ठीक होगा। और मीर शौकत अली में सुन रहे, कहते हैं माशाल्लाह नाइस ये शो, थैंक यू मीर शौकत अली। कहते हैं जी ओके चल रहा है अब बेहतरीन, थैंक यू। और आप हमें सुन रहे हैं कहां से, लकी वन मॉल कराची। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रहे हैं, तो ट्राई कीजिए, ट्राई करने में क्या ही जाता है।

हाँ जी यकीन जाने जब आप ट्राई करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। मेरे अंदर की हिंदी जो है ना वो जोर से निकल आती है। रमजान शेर भाई हैं कराची से, आप हमें सुन रहे हैं। ओके क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नजीबुल्ला भाई हमारे साथ हैं, थैंक यू। मोहम्मद समान कहते हैं टॉपिक का दूसरा आंसर है

ओके जी, सो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था बिल्कुल जी वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी या फिर आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी हमें जरूर बताया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से लिसनर्स हैं वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और रमजान भाई, यदि हम आपको अच्छा कसीदा जो होता है ना मेरे भाई, मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लगाती हूँ, प्रोग्राम के बीच में नहीं लगाती, तो आप कसीदे की फरमाइश जो कर चुके हैं तो मैं आपका कसीदा कल आकर लगा लूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली शेर मरी भाई हमारे साथ, वालेकुम असलम। अली मुर्तजा कहते हैं कि मैं एक

0: नमस्ते थी,
1: यानी कि फुल एंजॉयमेंट चल रही है करें जी एंजॉय करिए। और यहाँ पर हमारे जाने का वक्त आ चुका है और निधि कहती है कि अरे हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें जी मिलते हैं हम आप लोगों से 5 बजे वाले प्रोग्राम में। 5 बजे आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा। ओके जी, सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती रहिए और अपनी जिंदगी में खुश रहिए। और जरा कोशिश करें कि आपसे जो लोग हैं ना वो ऐसा हो कि बस थोड़े से राजी रहे, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे लोगों को राजी करने की तो तकरीबन वो कोशिश जो होगी ना, वो कोशिश और एफर्ट जो है ना वो देखे जाते हैं। ये चीज नहीं कि कितने लोग राजी होते हैं कितने नहीं, बस आप कोशिश करते रहें। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत, वरी मिलूं था 5 बजे। मानो ढेर सारा ख्याल रखिएगा। किते का गलती थी हुजे त माजरत कंहिंखे अहिड़ो लफ़्ज़ सुठो न लॻो जेको मूं ॻाल्हायो हुजे तव्हांखे सुठो न लॻो, हुन जे लाइ माजरत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिंह, सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

बनू में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सिस CTD ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन। टिनि ॾींहनि खां जारी ऑपरेशन में हेल ताईं 37 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं 11 ज़ख़्मी थी पिया। 3 लाश बि मिलिया। DPO बनू मूजिबि ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह करे हथियार हथ कया विया। मंबाती बारकज़ई वारो इलाइक़ो 60% क्लियर थी वियो आहे। शहरनि जे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ हुकूमत जी पहिरीं ज़िमेवारी आहे। अमन अमान जी सूरतहाल में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। वरे वज़ीर सैयद बराद अली शाह जो अमन अमान बाबति इजलास खे ख़िताब। इजलास में सीनियर वज़ीर शहरजील इनाम मेमून, घर वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ऐं ॿियनि जी शिरकत। सैयद बराद अली शाह चयो त ॾोहनि में मुलविज़ अंसरनि खे का बि रिआयत न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्दनि, मंशियात फरोशनि ऐं फतेहखोरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं तेज़ कयूं वञनि।

सिंध में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादकार सरापा एहतजाज, मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। लाड़काणो में घड़िया सिंध जे आबादकारनि जो इरीगेशन कॉम्प्लेक्स में इंजीनियर जी ऑफिस ॿाहिरां धरणो। रोहड़ी में काज़ीवाह जे पुछड़ीअ जे आबादकारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। घोटकीअ में ॾहरवाह जे आबादकारनि सीडा डायरेक्टर जी ऑफिस अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। ख़ैरपुर नासिर शाह में हारियुनि ऐं आबादकारनि केटीएन न्यूज़ जी ऑफिस अॻियां निटण उस में धरणो हयो। दखण में निमशाख जे आबादकारनि पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। सन में शाह आवेस कैनाल जे आबादकारनि एहतजाजी रैली कढी लाखा लिंक रोड ते धरणो हणी छॾियो। आबादकारनि जो चवण आहे त आपाशी अमलदार पाणी मुंडे जे आबादकारनि खे विकिरो करे रहिया आहिनि। ज़मीननि खे पाणी न मिलण सबब लखे रुपियनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। नोटिस वठी पाणी ॾियारियो वञे। सखर में सिंध बलोचिस्तान हारी आबादगार इतिहाद जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ धरणो टे ॾींहं बि जारी। अॻवाननि जो चवण आहे त टिनि ॾींहनि खां सख़्त गर्मीअ में धरणो हणी वेठल आहियूं, पर जायज़ मुतालबा मंज़ूर न आहिनि कया विया। पाणी ॾियारण जे लाइ आपाशी खाते जे चीफ इंजीनियर खे 24 कलाकनि जी मोहलत ॾिनी आहे। अॼु शाम ताईं मुतालबा तस्लीम न थिया त मुशावरत बाद बबलो बाईपास ते धरणो हणंदासीं। असां रोड ब्लॉक करे आवाम खे तकलीफ़ ॾियण नथा चाहियूं, पर पाणीअ ख़ातिर एहतजाज कंदासीं।

0: फैज़गंज ऐं कंबर में शहरनि जा बदमनी ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। कंबर में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ शहरनि प्रेस क्लब अॻियां टायर साड़े धरणो हुयो। फैज़गंज में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ महिरान हाईवे ते शामियाना हणी धरणो हयो वियो। पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। अॻवाननि जो चवण आहे त फैज़गंज जो अमन तबाह थी वियो आहे, पुलिस ॾोहारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई नथी करे। उडेरो लाल स्टेशन भरिसां मालगाड़ी सां हादसे सबबि मुअत्तल थियल अप ऐं डाउन ट्रेक बहाल नथी सघिया। ट्रेन मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते बीठल मुसाफ़िरनि खे रहियल भाड़ा वापसि कया विया। मालगाड़ी खां हटाइण ऐं रेलवे ट्रैफ़िक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। कराकुरम, तेज़गाम ऐं पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत ॿियूं ट्रेन मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते बीठल। ट्रेन जी अचवञ 24 कलाकनि ताईं मुअत्तल रहंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
4: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: मोरे पिया 30 जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो। सुबह
2: भी ना मलाल दे, आपको रब कभी ना जवाल दे, आपकी सब बलाओं को टाल दे, आपको हर खुशी बे मिसाल दे, आपको देख कर खिले गुल कहीं, आपको ऐसा हुस्न जमाल दे, आपको क्या लिखूं क्या कहूं, मेरी रब से है यही इल्तिजा के गुलाब सारे बहार के आपकी खिजाओं में डाल दे, और जिंदगी की हर एक खुशी मेरा रब आपको बेहिसाब दे।

0: एक शख्स गांव में एक शख्स मकई के बुने हुए भुट्टे के दाने खा रहा था। खाते हुए एक दाना नीचे गिर गया। करीबी एक खड़ा हुआ मुर्गा दाने पर झपका, लेकिन मुर्गे के पहुंचने से पहले ही उस शख्स ने दाना उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। दाना उसकी सांस की नाली में जा फंसा। उसे सांस लेने में शदीद तकलीफ शुरू हो गई। वो बहुत से हॉस्पिटल्स में गया, लेकिन इसका इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। आखिरकार हॉस्पिटल वालों ने इसके इलाज की हामी भर ली, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है और ये बात तुम्हें लिखकर देना होगी। उसने लिखकर दे दिया। वैसे भी उसका जीना बहुत दुश्वार हो रहा था। घर वालों से मिलने के बहाने वो गांव वापस गया। जो ही घर में दाखिल हुआ, उसे जोरदार छींक आई, जिसके साथ ही दाना भी जो है अचानक उसकी जो है सांस की नाली से यानी नाक के रास्ते जो है बाहर निकल के जा गिरा। पास वही मुर्गा खड़ा था और उसने वो दाना इत्मीनान से चुग लिया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और कोई कुछ भी कर ले, किसी दूसरे का रिस्क नहीं खा सकता। यह है रब्बे कायनात की तकसीम। वंस अगेन वेलकम कहूंगी अपने तमाम सामेन को जी मीर प्रकाश FM 88 के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आने अरे सब दोस्त हमारे, और जनाब आज का मौजूद गुफ्तगु भी आपको बताते चलें, क्योंकि आज इस टॉपिक के हवाले से होनी है आपसे हमारी और आपकी गुफ्तगु।
1: इंसाफ की चलती जरा धीरे से चलती है मगर चलती।
0: जनाब आपने मुझे ये बताना है आज कि
1: बहुत बारीक पिसता है,
0: जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया, ये आपने मुझे बताना है। आपको जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया, और ये बताने के लिए आपने जो है डायल करना है 03136615688 03136615688। आपको जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया। हमारी और आपकी लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत से तजुर्बात प्लस मुशाहदात होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है। तो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है जो आपने जिंदगी से सीखा है, ये बताने के लिए SMS के थ्रू अगर आप बताएंगे तो मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने लिखना है MPK, एक स्पेस देना है, उसके बाद लिखना है अपना नाम और पैगाम, और SMS रवाना कर देना है 8881 पर। आपका SMS पहुंचेगा हम तक, और ये मैसेज आपका हम अपने प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम करेंगे। अगर आप फेसबुक के जरिए फेसबुक के कमेंट्स के थ्रू प्रोग्राम का प्यारा सा हिस्सा बनना चाहते हैं तो GFM88 के फेसबुक पेज पे आप हमारे प्रोग्राम की पोस्ट पे अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। आपके फेसबुक कमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। चलते हैं अपने सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यास्मीन क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
2: टॉपिक के हवाले से बहुत अच्छा टॉपिक है आपकी। मैंने जिंदगी में ये भी सीखा है कि जो रहे वही सब है, किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए सिवाय अल्लाह ताला से।
0: सही, चले क्या कहेंगी सब सुनने वालों से?
2: सब सुनने वालों को मेरी तरफ से चार भरा सलाम। अंकल श्याम और मशा को भी बहुत बहुत सलाम। बहुत खुशी उन्होंने कॉल की थी।
0: चलिए बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू सो मच। आप
2: अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे।
0: थैंक यू सो मच दुआओं के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: ऑलराइट जनाब, हमने आपसे पूछा जिंदगी से सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा है आपने, और ये जानने के लिए अपने कॉलर्स को शामले प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम आदी।
0: वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा है?
1: अभी कुर्बान अली कासकरी को बनाया गोता जी गुलाम कासकरी लेकिन झंडो मर गया।
0: अदा क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में?
1: अभी ऐसी जो अपनी जिंदगी लेसन के बारे में ये सुनते हैं था जो कौन सा सुचे कपड़े शाम का मान लो पे चिंदा है गरीब की मदद कटाए हो जे के मानो हे पहुंच जाए के वंदे वास्ते के जरूरत है लकड़ी का गुलाम रसूल मसीह अजी सलम खान क्लासचारी की तरह का गुलाम रहे बलोच का जी के जना सब लोग सलाम।
0: ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। एक लंबी लिस्ट होती है दोस्तों की आपके। नेक्स्ट कॉलर को मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? डीके कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से? आय हाय, आजकल आजकल मैं यही सोच रही थी डीके जो आपने बताया।
2: ये हकीकत को जाना है, मेरी उम्र तो कम है लेकिन मैं जमाना देखा है।
0: जब लाइफ में जो
2: इंसान को पहचाना है,
0: जब इंसान की लाइफ में डिफिकल्ट फेज आता है ना, तब पहचान हो जाती है हमें सबकी। क्या कहेंगी सब सुनने वालों से?
2: बस सबको सुनाओ।
0: चलिए जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब, जिंदगी के सब जिंदगी से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा, टॉपिक को समझना है। और मुझे किसी ने लिख के भेजा है अस्सलाम वालेकुम, तो जिसने भी भेजा उस समय तमाम सुंदर समातों को ढेरों ढेर सलामती। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अदा वेलकम कहेंगे टॉपिक के बारे में, क्या कहेंगे?
1: अभी कार्तिक के बारे में जिंदगी में सारे सिखाया तो पहले तो माँ की खिदमत करे जो अल्लाह असाजी दिले माँ अल्लाह असाजी शुक्र अदा करे।
0: चलिए दोस्तों को याद करे।
1: अभी कुर्बान अली खास करे, अभी सोलंगी, अभी दरबार अली रजा लिखी है, गुलाम सुंदरिया है, यार मान सुंदरी है।
0: ठीक है जी, ओके। और जनाब, आपने बताना है आपने जिंदगी से क्या सबक सीखा। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो, वालेकुम सलाम
0: जनाब, वेलकम कहूंगी, कौन बात कर रहा है?
3: रुस्तम अली पवार बात कर रहा हूँ, पुनो खान पवार से।
0: अदा वेलकम कहेंगे, आपने जिंदगी से क्या सबक सीखा है?
3: हमने ये सीखा है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और वालदों की खिदमत चाहिए, वालदेन की।
0: ठीक है,
3: और प्यार मोहब्बत से लोगों से मिलना चाहिए।
0: चले ठीक हो गया अदा, बहुत शुक्रिया।
3: और अली रजा लगारी और सब दोस्तों को सलाम।
0: चलिए जनाब, वालेकुम असलाम सबकी जानिब से, आपके लिए भी ढेरों ढेर सलामती। आपने जिंदगी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है? नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम।
0: अली रजा लगारी, आपका नाम लिया, आप हाजिर हो गए, क्या कहें? आपकी उम्र माशाल्लाह बड़ी है, या वो क्या कहते हैं शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, दोनों में से कौन सा वाला बोले आपके लिए ये बताए।
4: बिल्कुल, जैसे घणो चाहे तो वो दिमाग हाजिर थे ना, तो असल सवाल हाजिर वासी चाहे
0: जी, क्या कहेंगे टॉपिक के लिए? जिंदगी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है आपने?
4: देखो वजन जी आए, देखो मोहब्बत प्यार देना आए, मोहब्बत सीखना आए, अदरक सीखना वो असो आए जिंदगी में आए, अगते भी सिखारींदा सीखना वजन जी, अदरक कंदा वजन जी कचर में वेंदा जेको लफ़्ज़ तव्हांजो चोरी बि कंदासीं ऐं हुननि खे सेखारींदासीं वजन जो अदरक करण ऐं वजन जा प्यार
0: चले। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, आप शामले प्रोग्राम हुए, दोस्तों को याद कर लें। सब नहीं पा रहा। वालेकुम अस्सलाम अदा, मेहरबानी तव्हांजी, तव्हां असांखे ज्वाइन कयो, और यहाँ थोड़ा सा सांस ले लें हम ना, मतलब सांस वो वाला नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं जब भी जिंदा है, मतलब के खामोशी के वक्त पे जाएंगे। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानी जाएंगे, ब्रेक के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: Pellegrino.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

न कई वेंदी। वरी वज़ीर सैयद बुराद अली शाह जो अमनमान बाबति इजलास खे खिताब। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जी इनाम, मेमण घर वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ऐं ॿियनि जी शिरकत। सैयद बुराद अली शाह चयो त ॾोहनि में मुलविज़ अंसरनि खे का बि रिआयत न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्दनि, मंशियात फरोशनि ऐं भतेखोरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं तेज़ कयूं वञनि। सिंध में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। लाड़काणो में गढ़ियासीन जे आबादगारनि जो इरीगेशन कॉम्पलेक्स में इंजीनियर जे ऑफिस ॿाहिरां धरणो। रोहड़ी में काज़ीबाह जे पुछड़े जे आबादगारनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। घोटके में ॾहरवाह जे आबादगारनि सीधा डायरेक्टर जे ऑफिस अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। कैडप नाथन शाह में हारनि ऐं आबादगारनि केटीएन न्यूज़ जे ऑफिस अॻियां निटण उस में धरणो हुयो। दखण में निम शाख जे आबादगारनि पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। सन में शाह आवेस कैनाल जे आबादगारनि एहतजाजी रैली कढी लाखा लिंक रोड ते धरणो हुयो। आबादगारनि जो चवण आहे त आपाशी अमलदार पाणी मुंड जे आबादगारनि खे विकिरो करे रहिया आहिनि। ज़मीननि खे पाणी न मिलण सबब लखे रुपियनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। नोटिस वठी पाणी ॾियारियो वञे। सखर में सिंध बलोचिस्तान हारी आबादगार इतिहाद जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ धरणो टे ॾींहं बि जारी। अॻवाननि जो चवण आहे त टिनि ॾींहनि खां सख़्त गर्मीअ में धरणो हणी वेठल आहियूं, पर जाइज़ मुतालबा मंज़ूर न आहिनि कया विया। पाणी ॾियारण जे लाइ आपाशी खाते जे चीफ इंजीनियर खे 24 कलाकनि जी मोहलत ॾिनी आहे। अॼु शाम ताईं मुतालबा तस्लीम न थिया त मुशावरत बाद बबलो बाईपास ते धरणो हणंदासीं। असां रोड ब्लॉक करे अवाम खे तकलीफ़ ॾियण नथा चाहियूं, पर पाणीअ जे ख़ातिर एहतजाज कंदासीं।

सिंधा कोर्ट सखर बेंच डहर के महकमा जा रहा नारी फहमीदा पिताफी के 10 अक्टूबर तीन बाजियाब कराए पेश करण जो हुक्म दई छो। सरकारी वकील की माफी का आईजी सिंध ए घरू सेक्रेटरी जहां जमानत जुगा वारंट वापस अदालत औरत की बाजाबी बाबत दरख्वास्त वापस वे भी सख्त कावड़ इजहार किया। पुलिस दबाव वी दरख्वास्त वापस नी कराई।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: रक्से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91
2: फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: एंडी बरहनम बाज़ाब्ता तौर बरतानिया जो वजीर आज़म बणजी वयो। बादशाह चार्ल्स एंडी बरहनम के हुकूमत ठाहिण जी दावत डिनी। एंडी बरहनम 10 डाउन स्ट्रीट पहुंची पंजे हामिन से मुलाकात कई ए खेन खिताब कंदे चयो त तालीमी निज़ाम में तब्दीलियूं आणे नौजवान नस्ल की खिदमत कंदासीं।

अमरीकी हमलनि बावजूद ट्रैकरी कंदड़नि ज़रिए ॿिन्ही मुल्कनि विच में सफारती राब्ता जारी आहिनि। अमरीका सां ॻाल्हियूं क़ौमी मफ़ादनि जे बुनियाद ते ई करे सघजनि थियूं। ईरान जे परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान खे ट्रैकरी कंदड़नि ज़रिए पैगाम ऐं तजवीज़ू मिली रहियूं आहिनि। मुल्की मफ़ादनि खे अॻियां रखी ॻाल्हियूं कंदासीं। ईरानी घरू वज़ीर इस्कंदर मोमिनी अॼु इस्लामाबाद पहुची रहियो आहे। ज़रियनि मूजिबि इस्कंदर मोमिनी ईरान सदर जो ख़ासि पैगाम खणी अची रहियो आहे। मोहसिन नकवी जी दावत ते ॿिनि ॾींहनि लाइ इस्लामाबाद ईंदड़ ईरानी घरू वज़ीर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर घरू वज़ीर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।

पाकिस्तान ऐं केनेडा जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़, परडे॒ही वज़ीर इसहाक़ डार जी इस्लामाबाद में केनेडियन हमनसब सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार चयो त केनेडा में तरसियल पाकिस्तानी कम्यूनिटी असांजे लाॻापन जो क़ीमती असासो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सहकार वधाइण जा वसी मौक़ा बि मौजूद आहिनि। केनेडियन परडे॒ही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि खे गडि॒यल तौर वधीक कम करण जी ज़रूरत आहे। ज़राअत, सनअत ऐं ॿियनि शोबनि में सहकार जा मौजूद आहिनि।

तबाह करे हथियार अटकिया व्या आहिनि। बम्बाती भारत सही वारो इलाइक़ो 60% क्लियर थी वियो आहे। शहरनि जे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ हुकूमत जी पहिरीं ज़िमेवारी आहे। अमन अमान जी सूरतहाल में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो अमन अमान बाबति इजलास खे ख़िताब। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण, घरू वज़ीर ज़ैल अंजार ऐं ॿियनि जी शिरकत। मुराद अली शाह चयो त ॾोहनि में मुलविस अंसरनि खे का बि रियायत न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्दनि, मंशियात फरोशनि ऐं भतेखोरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं तेज़ कयूं वञनि। सिंध में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। लाड़काणे में गढ़ी यासीन जे आबादगारनि जो इरीगेशन कॉम्प्लेक्स में इंजीनियर जे आफ़ीस ॿाहिरां धरणो। रोहड़ी में काज़ीवाह जे पुछड़ी जे आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। भोटकी में ॾहर वाह जे आबादगारनि सीडा डायरेक्टर जे आफ़ीस आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। खैरपुर नाथन शाह में बि हारियुनि ऐं आबादगारनि केटीए न्यूज़ आफ़ीस आॾो एहतजाज कयो। रखण में निम शाख जे आबादगारनि पाणीकोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। सन में बि आबादगारनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। आबादगारनि जो चवण हो त आपाशी अमलदार पाणी मुंड जे आबादगारनि खे विकिरो करे रहिया आहिनि। ज़मीननि खे पाणी न मिलण सबब लखे रुपयनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। सखर में सिंध बलोचिस्तान हारी आबादगार इतिहाद जो पाणीकोट ख़िलाफ़ धरणो टे ॾींहं बि जारी। अॻवाननि जो चवणु आहे त टिनि ॾींहनि खां सख़्त गर्मीअ में धरणो हणी वेठल आहियूं, पर जाइज़ मुतालबा मंज़ूर नाहिनि कया विया। पाणी ॾियारण लाइ आपाशी खाते जे चीफ इंजीनियर खे 24 कलाकनि जी मोहलत ॾिनी आहे। अॼु शाम ताईं मुतालबा तस्लीम न थिया त मुशावरत बाद बबलो बाईपास ते धरणो हणंदासीं। असां रोड ब्लॉक करे अवाम खे तकलीफ़ ॾियण नथा चाहियूं, पर पाणी ख़ातिर एहतजाज कंदासीं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो बदलता रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, उधंदा रहो।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
5: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान ए अमेरिका विच में छिकताण घटाने लाए आलमी सतह से सफारती कोशिशों जारी। चाकड़ी कंदड़ मुल्कन अबूरी मुआहदे की बहाली लाए 10 दी जंगबंदी की तजवीज दे छी। ईरानी अहदेदार पारा भी 10 दी की जंगबंदी वाली तजवीज मिलने की तस्दीक। आलमी खबरू इदारे राइटर्स मूजिब 10 दी जंगबंदी जो मकसद अबूरी मुआहदे के बीहर बहाल करने जा दग गोलन है। ईरानी परदेही तर्जमान इस्माइल बकाई है तो अमरीकी हमलन बावजूद ट्रैकड़ी कंदड़न जरिए बिन्हीं मुल्कन विच में सफारती राबता जारी है। ईरान के ट्रैकड़ी कंदड़न जरिए पैगाम ए तजवीजू मिली रही। अमरीका से गाल कौमी मफादन के बुनियाद से ही कर सकन थी।

बनू में दहशत गर्दन खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सिस सीटीडी ए पुलिस जो गडियल ऑपरेशन टिन डीह दौरान 37 दहशत गर्द मारजी वया ए 11 जख्मी थी पया टे लाश भी मिलिया डीपीओ बनू मूजिब ऑपरेशन दौरान दहशत गर्दन जा केतरा ही थाक तबाह कर हथियार हथ क्या वह आन बम्बाती बारकजई वारो इलाको 60% क्लियर थी वो है।

जुडिशियल कमीशन सिंध हाई कोर्ट में टे एडिशनल जज मुक़रर करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। चीफ जस्टिस जी सदारत हेठि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे इजलास में इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट क़ाइम करण जो बि फ़ैसिलो। ज़रियनि मूजिबि इजलास दौरान सिंध हाई कोर्ट में टे एडिशनल जजिस मुक़रर करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GAFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खत्ते की बनी है आवाज
2: जी एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: चिंताण घटाइण लाइ आलमी सतह ते सिफारिशूं कोशिशूं जारी। ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्कनि अबूरी मुआदे जी बहाली लाइ 10 ॾींहं जंगबंदी जी तजवीज़ ॾेई छॾी। ईरानी उहिदेदार पारां बि 10 ॾींहं जी जंगबंदी वारी तजवीज़ मिलण जी तस्दीक। आलमी ख़बरू इदारे राइटर्स मूजिब 10 ॾींहं जंगबंदीअ जो मक़सदु अबूरी मुआदे खे ॿीहर बहाल करण जा दग ॻोल्हण आहे। ईरानी परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो त अमरीकी हमलनि बावजूदि ट्रैकड़ी कंदड़नि ज़रिए ॿिन्ही मुल्कनि विच में सफारती राबता जारी आहिनि। ईरान खे ट्रैकड़ी कंदड़नि ज़रिए पैगाम ऐं तजवीज़ू मिली रहियूं आहिनि। अमरीका सां ॻाल्हियूं क़ौमी बुनियाद ते ई करे सघजनि थियूं। ईरानी घरू वज़ीर इस्कंदर मोमिनी अॼु इस्लामाबाद पहुची रहियो आहे। ज़रियनि मूजिब इस्कंदर मोमिनी ईरानी सदर जो ख़ासि पैगाम खणी अची रहियो आहे। मोहसिन नकवी जी दावत ते ॿिनि ॾींहनि लाइ इस्लामाबाद ईंदड़ ईरानी घरू वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, घरू वज़ीर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।

0: ऐं ईरान ऐं अमरीका जा हिक ॿिए ते नाएं ॾींहं बि शदीद हमला। अमरीकी फिज़ाई हमलनि जो दायरो सिस्तान, बलोचिस्तान ऐं खोज़िस्तान ते पखिड़िजी वियो। माशहर, बंदर अमाम, तबरेज़, बोशहर, हरमुज़गान, जासिक ऐं चाबहार में बि हमला कया विया। ईरान पारां बि उर्दन जे अकबा एयरपोर्ट ते अमरीकी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। कुवैत जे अली सालम अमरीकी हवाई अॾे ते बि ड्रोन हमिलो। रेडार गोदाम MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया विया। छा इराक में हिकु अर्जन जी तस्दीक करे छॾी।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
5: Yeah!

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: लगन।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध दादा।
3: सुबह की पिक का जाम, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारिम को तो हम खो चुके, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उदंदा रहो उदंदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: तुझे बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना
0: सामने तमाशा बन गई मामा। अच्छा।

0: तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना गेट आउट। एक बार कहती थी कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: मोरे पिया, रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

यमन जे हौसी बागिन सऊदी अरब जी नाकाबंदी जो ऐलान कर छो। हौसी बागिन जे तर्जमान इंसारुल जो चवण आहे त सऊदी अरब सनआ एयरपोर्ट ते हमलो कयो, जवाब में असां बि बहरी नाकाबंदी कई आहे, अख जे बदले अख वारे असूल ते कायम आहियूं। हौसी बागिन जी नाकाबंदी खां पोइ इलाइक़े में छिकताण वधी वई। पाकिस्तान ऐं केनेडा जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सरकारी दौरे ते इस्लामाबाद पहुतल केनेडियन परडेही वज़ीर जूं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां धारदार मुलाक़ातूं। केनेडा मां किनोला जी पाकिस्तान दरआमद जे प्रोटोकॉल ते सहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान ऐं केनेडा विच में दोस्ताना लाॻापा आहिनि। वापार, सीड़पकारी ऐं ज़रात जे शोबनि में वधीक सहकार जी ज़रूरत आहे। केनेडा जे वज़ीर आज़म सां जल्द मुलाक़ात जो मुंतज़िर आहियां। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो चवण हो त केनेडा में तरसियल पाकिस्तानी कम्यूनिटी लाॻापन जो क़ीमती असासो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सहकार वधाइण जा वसी मौक़ा मौजूद आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त पाकिस्तान केनेडा सां लाॻापन खे सभिनी शोबनि में हथी ॾियणु चाहे थो। केनेडियन परडेही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि खे गॾियल तौर वधीक कम करण जी ज़रूरत आहे। ज़रात, सनअत ऐं ॿियनि शोबनि में सहकार जा वसी इम्कान मौजूद आहिनि। बनू में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सिस, सीटीडी ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन। टिनि ॾींहनि दौरान 37 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं 11 ज़ख़्मी थी पिया। 3 लाश बि मिलिया। डीपीओ बनू मूजिबि ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह कया विया। बमबाती

जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध इस्लामाबाद ए पेशावर हाई कोर्ट्स में जजिस की मुकररी की मंजूरी दे छी। चीफ जस्टिस जस्टिस यहिया अफरीदी की सदारत हेठ इजलास दौरान जजिस की मुकररी ए मुस्तकिली ते गौर विचार कयो वियो। पधराई मूजिब सिंध हाई कोर्ट बाबत पंज एडिशनल जजिस की मुकररी ते गौर कंदे टिन की मंजूरी दिनी वही। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुरेश कुमार, एडवोकेट शाहनवाज मेमण, एडवोकेट मोहम्मद हुमायूं खान शामिल। एडिशनल जज खालिद शाहानी के मुद्दे में छह महीन की वाद। एडिशनल जज सैयद फयाजुल हसन शाह मुस्तकिल नी सक।

हुकूमत तेल जा नवा अघ मुकरर करण वाले तरीके कार जी मंजूरी ॾेई छॾी। पेट्रोल ऐं डीजल जूं क़ीमतूं हाणे रोज़ानी बुनियाद ते मुकरर कयूं वेंदियूं। ओगरा रोज़ानो नयूं एक्स डिपो क़ीमतूं पंहिंजी वेबसाइट ते जारी कंदी। पेट्रोल ऐं डीजल जूं क़ीमतूं आलमी मार्केट जे गुज़िरियल 7 ॾींहनि जी सरासरी अघनि सां ॻंढियल हूंदियूं। छंछर ऐं आचर ते पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में का बि तब्दीली न कई वेंदी। ओगरा खे रोज़ाने क़ीमतुनि जे ऐलान लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत जी मंज़ूरीअ जी ज़रूरत न हूंदी। शहरनि जे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ हुकूमत जी पहिरीं ज़िमेवारी आहे। अमन अमान जी सूरतहाल में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो अमन अमान बाबति इजलास खे ख़िताब। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण, घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार ऐं ॿियनि जी शिरकत। मुराद अली शाह चयो त ॾोहनि में मुलविस अंसरनि खे का बि रिआयत न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्दनि, मंशियात फरोशनि ऐं भते खोरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं तेज़ कयूं वञनि।

सिंध मां 20 खां वधीक अगवा ऐं गुम थियल ॿारनि मां हिकु बि बाज़ियाब न थियो। बबलो बाईपास वटि कैम्प हणी वेठल प्रिया एक्शन कमेटी जे अॻवाननि पारां 4 ॾींहं हिकु ई वक़्त 5 शहरनि में धरणनि जो ऐलान। एक्शन कमेटी जे अॻवाननि मूजिबि 4 ॾींहं बबलो वटि क़ौमी शाहराह, हैदराबाद में वाधूवा ऐं कराचीअ में 3 तलवार वटि धरणा हया वेंदा। साॻे ॾींहुं उॿाड़ो में कमू शहीद ऐं कश्मीर में डेरा मोड़ वटि बि धरणा लॻंदा। पुलिस जी वरतल मोहलत ख़तम थी वई पर पुलिस अमलदारनि हिकु बि ॿार बाज़ियाब न करायो। सेठारजा मां मुबैना तौर 5 महीना अॻु अॻवा ॼाणियल शागिर्दियाणी आसफा मुगल केपीअ मां हथ वारसनि पारां मुसलसल एहतजाज ऐं बबलो धरणे में शिरकत खां पोइ पुलिस नेठि जाॻी पई। अॻवा ॼाणियल नारी केपी जे शहर नौशोरा मां हथु कई वई। पुलिस मूजिबि नौशोरा जी मकामी पुलिस नारी हथु कयो, खेसि उतां जी अदालत में पेश कयो वेंदो। अदालत में नारी जे बयान बाद वधीक कार्रवाई अमल में आंदी वेंदी। नारी पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि पसंदि जो परणो कयो आहे।

सिंध में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आपातकाल सलापा एहतजाज बणियल, मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। लाटाणे में गढ़ी यासीन जे आबादगारनि इरीगेशन कॉम्प्लेक्स में इंजीनियर जे आफ़ीस ॿाहिरां धरणो हयो। अरोड़ी में काज़ीवा जे पुछड़ी जे आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। घोटकी में ॾहरवा जे आबादगारनि सीडा डायरेक्टर जे आफ़ीस अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। खैरपुर नाथन शाह में हारिन ऐं आबादगारनि केटीएन न्यूज़ जे आफ़ीस आॾो निटण उस में धरणो हयो। ॾखण में निम शाख जे आबादगारनि पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। सन में शाह अवेस कैनाल जे आबादगारनि एहतजाजी रैली कढी, लाखा लिंक रोड ते धरणो हयो। आबादगारनि जो चवण हो त आपाशी अमलदार पाणी मुंड जे आबादगारनि खे विकिरो करे रहिया आहिनि। ज़मीननि खे पाणी न मिलण सबबि लखे रुपियनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। नोटिस वठी पाणी ॾिरायो वञे। सखर में सिंध बलोचिस्तान हारी आबादगार इतिहाद जो पाणी कोट ख़िलाफ़ धरणो टे ॾींहं बि जारी। अॻवाननि जो चवण हो त टिन ॾींहनि खां सख़्त गर्मीअ में धरणो हणी वेठल आहियूं, पर जाइज़ मुतालबा मंज़ूर न आहिनि कया विया। पाणी ॾियारण लाइ आपाशी खाते जे चीफ इंजीनियर खे 24 कलाकनि जी मोहलत ॾिनी आहे। अॼु शाम ताईं मुतालबा तस्लीम न थिया त मुशावरत बाद बवलो बाईपास ते धरणो हणंदासीं। असां रोड ब्लॉक करे अवाम खे तकलीफ़ ॾियण नथा चाहियूं, पर पाणी ख़ातिर एहतजाज कंदासीं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GAFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

ईरान ऐं अमरीका जा हिक ॿिए ते नाएं ॾींहं बि शदीद हमला। अमरीकी फिज़ाई हमलनि जो दायरो सिस्तान, बलोचिस्तान ऐं खोजिस्तान ते पखिड़िजी वियो। मा शहर, बंदर इमाम तबरेज़, बोशहर, हर्मसगान, जासिक ऐं चाबहार में बि हमला कया विया। ईरान पारां बि उर्दन जे अकबा एयरपोर्ट ते अमरीकी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। कुवैत जे अली अल सालिम अमरीकी हवाई अॾे ते बि ड्रोन हमिलो। रेडार, गोदाम ऐं MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया विया। अमरीका इराक में हिकु अमरीकी फ़ौज मारजण जी तस्दीक करे छॾी। बागिन सऊदी अरब जी नाकाम

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।